0: मेरा बकुल के नेरा अगर तू यार का मेन भी दशक वो मेन भी नेरा दशक वो मेन भी नेरा
1: बिजी वही बिजी ब्रो हमारा
0: जोरन
1: बले
0: जोरन सेगा
1: बले बस फो तोमा को तो ही बिजी है या तोमा को बना देते हैं काके अबू बकर
0: ये आइडा
1: ली